0: ସବୁ କିଛି ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ଅଚିରେ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇଯିବ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि

0: सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक।
2: अच्छा दास बाबु, आपणको घरटा 1970 रे तयार हेतला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाट सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदनार प्रथम भक्ति अर्घ्य वीणापणी मिश्रंक कंठरे पुरातन रचना।

0: भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु आजि प्रचारित हेबाक थिबा कार्यक्रम संपर्कर सूचना। मन की बात शीर्षकरे भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीकर देशवासीक उद्देश्य उद्बोधन रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली आज दिन 11:00 परे परे एहर ओडिया भाषांतर आम केन्द्र ओडिया भाषांतर पुनः प्रसारण आम केन्द्र आज राति 8:00 आमर सस्त सकाळ 17:10 इतरे रही आलोचना वार्धक्य परिसरा जनित समस्या ए संपर्क आलोचना करिसेंती डॉक्टर लक्ष्मीकांत साहू शिशु संसार सकाळ 17:25 रही देवस्नान पूर्णिमा संपर्क आलोचना करिसेंती शुभेंदु शेखर स्वाई एवं कुनिकुनि पिलामानक द्वारा गप कविता श्लोक पाठ एवं मजा कथा ओडिया आलबम गीतर कार्यक्रम सकाळ 8:30 बैदेश विलासर 68तम भाग सकाळ 8:45 मो पसंद सकाळ 9:00 दिन 10:00 प्रचार करिबो नाटक ध्रुव स्वामीजी मूल हिंदी मंच नाटक जयशंकर प्रसाद बेतार नाट्य रूपांतर सुदर्शन कुमार ओडिया अनुवाद डॉ रघुनाथ महापात्र प्रयोजना प्रदीप्त कुमार श्रीचंदन। पुनश्च कहि रखुछु मन की बात शीर्षक भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीकर देशवासी उद्देश्य उद्बोधन रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली दिन 11:00 एवं परे परे एहर ओडिया भाषांतर आम केन्द्र मंजुल मध्यान एसएमएस मध्यम श्रोता हिंदी और ओडिया कथचित्र गीतर कार्यक्रम दिन 12:00 दिन 1:10 एकतारा भजन परेषण कर कुलमणि दास नारी महल प्रचार करिबो नाटक आखि दिन 1:20 मूल गल्प दुखीश्याम महापात्र बेतार रूपांतर हिमांशु भूषण सावत परिचालना गोपा।

0: ଶେଷ ହେଲା ଶିଶୁ ସଞ୍ଚର।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया, तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से यह सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
5: जदि आपण एबे कौनसी नूतन कार किंबा बाइक किणिबा योजना करुछंती, एहा आपणको एबे बहुत सुलभ मूल्यरे उपलब्ध हेबो। जीएसटी परिषद छोटो कार 350 सीसी रो बाइक एवं तीनि चकिया जान उपरे टैक्स 28% रो ह्रास करी 18% करि दैछंती। सेप्टेम्बर 22 तारीख 2025 ठारू लागू हेबाकु थिबा एही पूजा उपहार एंट्री लेवल गाड़ीगुड़ी को आहुरी सस्ता करदेव, किंतु लग्जरी कार एवं बड़ बाइक 40% नुआ स्लाब रे आसीजिव, तथापि एसब उपरे कम टैक्स लागिव।

0: ସହିତ ନୂଆ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିହାତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରେଡ୍, ରୁଟି, ଛେନା, ପନିର ଉପରେ ଏବେ କୌଣସି GST ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା 33 ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦର କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ GST ରିହାତି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଲିସି କିଣିବା ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ କାର୍ ଏବଂ 350 cc ବାଇକ୍ରୁ GST ଉଠାଯାଇ 18% କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବାଇକ୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ।
1: ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ କିଣିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। GST ପରିଷଦ ଛୋଟ କାର୍, 350 cc ବାଇକ୍ ଏବଂ ତିନିଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 28% ହ୍ରାସ କରି 18% କରିଦେଇଛନ୍ତି। September 22, 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ଉପହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବାଇକ୍ 40% ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆସିଯିବ, ତଥାପି ଏସବୁ ଉପରେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ।
2: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 982 kHz। ସମୟ ସକାଳ 8 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया

0: पैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा है। प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के

0: 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बर
1: जी। लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर

0: भी फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुची।
0: पुणी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिलीची, लंबा फसीबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जीवे।
0: सर एत्ते कोठु
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु, बाकी परे।
0: सर 2 लाख
3: कोन हैला बापा
0: जियो, से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिलीची।
1: अरे
0: काटी देला,
3: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट बळी किछि नाही, ए सबु फ्रॉड।
0: फ्रॉड
3: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधी फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु।

0: हत्या, मुहेचर पलाय पलाय।
1: हत्या? किए का हत्या कला?
2: कुमार, तमको भी कौन एति की बेले आसीबा को थिला? मु प्रार्थना करूची, तमे एठारु चली जाओ। मोर ये अपमानित स्थिति रे मते निर्पसन देखिबा पई कोनोसी पुरुषर अधिकार नहीं। मृत्यु चादर द्वारा निजक मते घोड़ेई हवा को दियो।
1: देवी, जीवन होची विश्वर संपत्ति। प्रमाद हो कि क्षणिक आवेश हो अथवा दुखर काठिन्य हो ताको नष्ट करिबा ठीक नुहे। मु जानी परिबे कि गुप्तकुल लक्ष्मी आज एभली छिन्नमस्त अवतार नेबाकु काई की इच्छा करचंती?
2: ना, आउ मु मरिबिनी, कारण तमे आसी जाइछ। मोर शिविका सहित चामर सज्जित अश्व उपरे बसी तमे ही से दिन आसीथिलो ना। मो सहित आसिला बेले तमर विश्वासपूर्ण मुखमंडल कौन पाई एते प्रसन्न थिला?
1: गुप्तकुल वधु को आदरपूर्वक आनिया पई मु जाइथिली, तेणु प्रसन्न होइ नथांती कौन पाई?
2: ताले आज भी मते सही बड़ी शक शिविर पहुंचाई देबा पई तमकु मो सहित जीवाकु हबो। कुमार
1: परिहास करुनांती त?
2: एहा परिहास नुहे कुमार, राजांकर आदेश। शक राजांकु मोर आवश्यकता पागल करिछि, मते उपहार न देले तांकर आक्रमण दूर होइ परिबनी।
1: ना, एहा होइ परिबनी महादेवी। जे मर्यादा पई जो महत्व को स्थिरता प्रदान करिया पई मो राजदंड ग्रहण न करी निजकु मिलिथिबा अधिकार त्याग कर देली, तार एपरी अपमान। मो बंचीथिबा जाय आर्ज्य समुद्र गुप्तंक स्वर्ग भली गर्व को एपरी पददलित हेबाकु पड़िबो नै। आउ गोटे कथा, मो हृदय अंधकार भितरे प्रथम किरण सदृश आसी जे अज्ञात भावरे निजर प्रकाश ढाली दैथिला, ताकु मध्य मु केवल एथि पई भूली जिबाकु चेष्टा करथिलि जे
2: हां हां कुह कुमार कुह।
3: देखत कुमार, ये की कथा, आत्महत्या जे किते बड़ अपराध
1: आपण को द्वारा ता मध्य होई परु नै एया ना।
3: देखु छ अमात्य कुमार को मनरे लुचि रहिथिबा कलुष केते अधिक भयंकर देखु छ त?
4: कुमार, गुप्त वंशर सर्वोत्तम गृह विधान हेउछि विनय, ताकु भूली जिबा उचित नहि। कुमार
1: अमात्य, तुमे बोध हुए सेथि पे प्रस्ताव दैछो जे महादेवी को समर्पण करी संधि करा जाउ, एहि बोध हुए विनयर ज्वलंत उदाहरण।
4: सेथि पे मते प्राणदंड दिया जाउ, मु ताकु अविचलित भावे ग्रहण करिबि, किंतु तथापि कहिबि राजा और राष्ट्रर रक्षा हेबा उचित।
5: बाह, चमत्कार! जो राजा निजो राज्य को रक्षा करिया पे असमर्थ सेपरी राजार पुणी रक्षा हेबा दरकार। अमात्यंकर एहा किभली युक्ति? तुम्हें मृत्युदंड पाई इच्छुक उत्साहित, हाँ महादेवी आत्महत्या करने को प्रस्तुत, ताहले एपरी संकेत कौन पाई? थरे शेष शक्ति द्वारा परीक्षा करी देखा जाओ, बंची रहिबो तो राष्ट्र और सम्मान मध्य बंची जीवो, आउ ता नहले तो सर्वनाश सुनिश्चित।
1: धन्य धन्य मंदाकिनी धन्य, एभली उत्साहपूर्ण बाणी शुणी वाले कि तू कौट आसीगलु? तू ठीक कथा कहलु अमात्य, ए स्त्री लोकटी कौन कहिला सुनिल त?
3: हाँ, या दुरभिसंधि छोड़ना, मो प्राण नेबा पई गोटे कौश।
1: ताले आसो, आमे स्त्री होई जिबा आउ बसी कांदिबा। सुण अमात्य, मु ध्रुव स्वामिनी बेसरे शक राजा पाखकु जिबी, जदि सफल हुए तेबे तो भलो कथा, अन्यथा मो मृत्यु परे तुमे माने जेपरी उचित भाविबो सेहिपरी करिबो।
2: ना, मु तुमको जिबाकु देबी नाही, मोर ए क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन रा सम्मान रक्षा पई एते बड़ बलिदान रा कोनोसी आवश्यकता नाही।
4: राजाधीराज, आज्ञा दियंतु, एहा ही एकमात्र पंथा जहा कुमार कहुछंती, किंतु राजनीति दृष्टि रो महादेवींकर मध्य सेठाकु जीवा निहाती आवश्यक।
1: कौन पाई आवश्यक? जदि से जीवा निहाती आवश्यक तेबे मु जीवारे लाभ कौन?
3: हाँ जाओ, एहा मोर आदेश, आसो अमात्य।
1: तथापि मु एकुटिया जीवि।
2: कुमार, राजांकर उद्देश्य कौन जान? मो ठारु ओ तुम ठारु एका थरके मुक्ति, ताहले ताहा ही कौन पाई न हबो? आमे दुहे जीवा तमर ध्रुव स्वामिनी बेशकु मु निजे ध्रुव स्वामिनी न देखिले से बेसर की कार्य?
1: ताहले जाई प्रस्तुत हो।
6: खिंगळ

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गए,
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत

0: शिकायत करें तो पहले बैंक फिर सीमेंस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ

सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों,

कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी

शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं
और अपना रहे हैं।

भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों,

आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले

तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद

0: ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे। लोगों से कार

0: पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था।

0: उठी आई से कला
1: मते मते तमे माइला तमे तमे इतने साहस
0: हाँ हाँ मारी बे हाँ होनी मारी बे
1: आओ थारे मोदे हरे हाथों दला देखी
0: हाथों दला कौन करियो
1: राती महापत्र राष्ट्र तली ही जीवाएगा
0: राती
1: हे यमाने रहे जंती
0: राती राती सुनो राती प्लीज राती

0: साहेब साहेब
1: के
0: जोड़े क्या आने ची साहेब
1: मैं तोर को नहीं आसा
0: अच्छा साहेब
1: हाँ
0: घर टे सफा करी
1: हाँ हाँ करो अच्छा तुम ना
0: कांची
1: बा खूब भलो ना
0: साहेब
1: किछ कहिबो
0: गाधोबा को पानी देबी
1: एते सकालु ना ना आउ टिके जाओ
0: अच्छा साहेब मु जाऊ छी
1: हां हां अच्छा सुनो सुनो
0: साहेब
1: तमरो केही भौणी पणी थिले कि
0: भौणी नाही नाही साहेब मोर भाई भौणी केही नांती काहे कि साहेब मो परी कहा को देखी छथि कि
1: ना अच्छा तमे जाओ सुनो सुनो
0: कौन हैला साहेब
1: अरे अरे पुणी सेम चाहिलो
0: माफ करिवे साहेब अपन रागु चंती काहे की मोर दोष कोन हैला साहेब
1: कांचे तमे जालो तमे चले जाओ प्लीज आई से प्लीज गो आउट
2: मोहन मोहन करे कोन हैला एमि तो हटात पार्टी करी उठलु मोहन मोड़ चाहतो
1: से गला ना नहीं
2: के ओ कांची कांची तू गलो उठू जा हो से गला नी एतर टिके चाहे
1: बेमाल सत कह से झिया किए
2: अरे से परा कांची वो मेड सर्वेंट
1: नो बाय नो मींस से कांची नु है
2: तू मुंडो फुंडो खराब हे गला ने कोन करे से परा कांची
1: ना मु कहू छी से कांची नु है
2: कांची नु है तो से किए
1: से रति तू कौन भावुछु मु तको चिन्ह पारिबिनी दि वर्ष बुझिलु दीर्घ दि वर्ष से सब बेले मते डरैछि
2: अच्छा मोहन तोर कौन हिच कहिलु एमिति विचलित होछु काई सबड़े कह किए त डरैछि
1: तार से बड़ बड़ आखि रागर तम तम रक्तिम कटाक्ष सते कि से मते ऑक्टोपस परि संपूर्ण ग्रास करिवो तार से निष्प्रभ चाहणी
2: मोहन मोहन हाय होस को आ मोहन मोहन
1: सत कहू बीम से झील कांची आखि भितर मुंबर रथी को देखी मु ठीक चिन्ह पार्टी प्रत्येक मुहूर्त से गोटे प्रश्न मत विचलित कर रथी को हत्या करी मु प्रथम सावधान ही था तेज से हूं तो बची जाता तू कह बीमल

0: नारी महल से सहला।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर सतुरी राइट एते स्ट्रॉंग के
2: अरे एटा एकदम सिंपल मुझे मोर विश्वास रखी आज चेटिनाड सीमेंट
3: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बर पीढ़ी पाई रही था चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे दिन गोटे बजे 50 मिनट हेबाकु जाउछि। सुनंतु ओडिया रे संवाद।
4: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद समुद्रठारु आरंभ करि आकाश पर्यंत भारत एबे अधिक सुरक्षित ओ आत्मनिर्भरशील। मन की बात रे देशवासींकु संबोधित करि कहिले प्रधानमंत्री। सेसेल्स ठारे राष्ट्रपति पेट्रिक हर्मिनी ओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदींक मध्यरे जारी रहिछि गुरुत्वपूर्ण द्विपाक्षिक बैठक। ऑपरेशन आमिस्टाड अधीनरे भूकंप प्रभावित भेनेजुएलारे पहुंचिला भारतर रिलीफ सामग्री। अमेरिका एवं ईरान मध्यरे होइथिबा अस्थायी युद्ध विरति चुक्ति प्रभावहीन। पश्चिम एशिया रे वृद्धि पाइला युद्ध आशंका। एवं आईसीसी महिला विश्वकप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता रे आज ऑस्ट्रेलिया को भेटिबो भारत। आकाशवाणी 135 मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहते भारत विमान चलाचल क्षेत्र में एक बड़ सफलता मिली। आम देश में तैयारी होता C-295 विमान प्रथम थर पर सफलतार आकाशे उड़ीपरी 40 विमान एवं भारत में याद्वारा आम देश छोट बड़ शिल्पगुड़ी नुआ शक्ति मिल लोक निजुक्ति।

0: Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Man Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी

0: ली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर

0: अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्वकप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्वकप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକେ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
3: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
4: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
3: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: संस्कृति
1: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंति सत्यव्रत बेहुरा मुख्य संवाद स्वदेशी ज्ञानकौशलरे निर्मित क्रूज क्षेपणास्त्रर सफल परीक्षण प्रतिरक्षा क्षेत्रर देशको आत्मनिर्भरता सुदृढ़ करिछि कहिले प्रधानमंत्री

आकाशवाणी कटक शुणु केतोटी हिंदी कथचित्र गीत कार्यक्रम प्रथम गीत गाई लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार कथचित्र हीरा पन्ना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड।
1: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र असरती अपराह एणतु कतोटी हिंदी कथचित्र गीत कार्यक्रम प्रथम गीत गई लता मंगेशकर कथचित्र लेकिन

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखन्तु SBI सचेतन रहन्तु सुरक्षित रहन्तु।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर
2: उन्नीस सतुरी तैयारी
3: राजेन्द्र नना नुआगारु लेखिछंती नमिता अग्रवाल को कंठरु गीतटे सुनिबा पई ताले सुनी दोछो नमिता अग्रवाल को कंठरु गीतटिए

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୃତିର ପାହାଚ ଉପସ୍ଥାପନା ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी

0: नमस्कार श्रोता बंधु, शुभ संध्या। स्वागत जनाउछु आजिर संपर्क कार्यक्रम को। आजिर कार्यक्रम रे मु अछि आपनको उपस्थापिका श्री आउ मु स्वाति। बंधु, मानव जीवनर अनंत यात्रा पथरे जदि कोनोसी अदृश्य सूत्र मनुष्य को मनुष्य सह जोड़ी रखी थाए तेबे ता हेउछि संपर्क। एहा केवल शब्द टिए नुहे, बरं स्नेह, ममता, विश्वास ओ आत्मीयतार एक अमृतमय अनुभूति।
1: हाँ बंधु, संपर्क हेउछि हृदय रु हृदय को संयोग करुथबा एक पवित्र सेतु। एहार भीति प्रस्तर हेउछि भल पाइबा, सौहार्द ओ पारस्परिक श्रद्धा बोध।
0: प्रकृतिर प्रत्येक उपादान जेपरि परस्पर सहित अदृश्य सूत्ररे आबद्ध, सेहिपरि मनुष्य मध्य संपर्कर सुवर्ण श्रृंखलरे आबद्ध होइ रहिछि। एही बन्धन ही जीवनकु सरस ओ सुन्दर करिथाय।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
2: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

0: অজনা লিঙ্ক ক্লিক করন্তু নাই। সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন 1930 মনে রাখন্তু। এসবিআই সচেতন রহন্তু, সুরক্ষিত রহন্তু।
1: আচ্ছা দাসবাবু, আপনক ঘরটা 1970 রে তৈরি হইতিলা, রাইট? তাহলে এই পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমতি আছে?
2: আরে এইটা একদম সিম্পল, এবং সেইথিপাই মু সেতবেলে মোর বিশ্বাস রাখিতিলি, এবং আজি মধ্য চেটিনাড সিমেন্ট উপরে।
3: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নুহে বরং পিঢ়ি পাই রহি থাকে। চেটিনাড সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট, 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া। চেটিনাড সিমেন্ট, দ্য পারফেক্ট কনক্রিট চয়েস।
4: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
5: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
4: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
5: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
4: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण माने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। शुणन्तु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम सम्पर्कर सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 62वां भाग संध्या 6:10 आईसीसी महिला टी20 विश्वकप श्रृंखला इंग्लैंड लंडन स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य खेल मैच धारा विवरणी रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली संध्या 6:30 संध्या 6:39 संध्या 6:55 राति 17:14 राति 17:30 राति 17:58 और राति 9:15 खेल शेष होगा पर्यंत। जिला हालचाल शुणे गजपति जिला संपर्क में राति 17:25 राति 8:00 मन की बात शीर्षक भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन शुणे ओडिया भाषांतर समाचार दर्पण प्रचार कर राति 8:30। आसंताकाल कार्यक्रम सूचना वंदना प्रचार कर सकाल 6:05 अनुचिंता सकाल 6:35 उपस्थापना तरुणकांति राउत श्रीमद भागवतर 80वां भाग सकाल 6:40 आमर स्वास्थ्य सकाल 17:10 शुणे श्रवण जंत्र व्यवहार आलोचना करेंगे डाक्तर अश्विनी कुमार दास प्रभात परिक्रमा सकाल 17:25 कथिका सकाल 17:35 शुणे श्रीजगन्नाथ संस्कृति देवस्नान पूर्णिमा आलोचक पीतवास राउतराय अतसी कुसुम सकाल 17:40 कंठशिल्पी विजय कुमार जेना। श्रीक्षेत्र माधुरी सकाल 8:30 शुणे स्नान पूर्णिमा संपर्क आलोचना करेंगे डॉक्टर भास्कर मिश्र वैदेहिक विलासर 69वां भाग सकाल 8:45 नाटक भक्त बालिगा दास प्रचार कर दिन 10:00 रचना ब्रजमोहन महांती प्रयोजना गोपबंधु चौधरी अभुला गीत दिन 11:10 कंठशिल्पी तन्मय कुमार होता और संगीता गोसाई पाला दिन 11:30 परिवेशन करेंगे किशोर चंद्र नायक और साथी जोड़ीनागरा बात्य दिन 10:00 परिवेशन करेंगे नरेन्द्र मल्लिक और साथी नारीमहल आलापर शुणे सुषमा बारिक सहित साक्षात्कार दिन 20:20 युववाणी प्रचार कर अपराह 5:30 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 63वां भाग संध्या 6:10 युवशक्ति संध्या 6:30 शुणे स्टार्टअप मध्यम युववर्गों आत्मनिजुक्ति सुजोग आलोचक पंचानन दास जिला हालचाल शुणे गंजाम जिला संपर्क में राति 17:25 कृषि संसार राति 17:30 शुणे अग्रणी चाषी गुरुचरण जेना सहित साक्षात्कार ओडिसी गीत राति 8:30 कंठशिल्पी लक्ष्मी प्रिया नायक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक राति 9:30 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली नाटक भक्त वत्सल जगन्नाथ प्रचार कर राति 10:02 रचना।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

0: समुद्रतः आकाशपर्यन्तम् उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति. आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्. यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता. सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्. प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः सञ्चेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्. पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्. अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्. आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते. अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधाति.
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है. दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है. ये आधुनिक टेक्नोलॉजी

0: को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत अद्य भारतीय संस्कृति ही विश्वस्मिन ही विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान् यत्र आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
0: कोलकाता में आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन द्व्यधिकैकशत स्वर्ण पदकैः सह आहत्य चतुर्दशोत्तर एकशत पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेष् च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मान गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्त। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य यूपीआई तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेश मन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्।

0: केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन् सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्ध विरामः खण्डितः। गत कतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैल वाहक पोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायु प्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस is Akashvani. We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Australia of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to our special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, अमर हो जाता है। और आज इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियां अपने विश्व कप सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान देने उतरेंगी। सामने है 6 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम 4 का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, पूर्व क्रिकेटर ख्याति गुलानी, बीसीसीआई कोच रविन्द्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
5: नमस्कार।
6: Kathy, India have tried all their 16 players and yet the combination does not look convincing.
7: Yeah, definitely. I mean, you must have seen that they have been trying their best in the series, but I'm sure that the best is yet to come. And the sloppy and scratchy fielding, definitely it was the reason for not performing in the previous matches. Let's see. In the coming matches, I'll see. I mean, this is very important, this match. And I'm sure that the players like Richa Ghosh and if you talk about Deepti Sharma, they are yet to perform, they are yet to give their best.
4: सौमित्र, टॉस में बहुत ज्यादा समय नहीं है, लॉर्ड्स की पिच को देखते हुए बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है पिछले कुछ समय में, क्या लगता है क्या होने वाला है? चलते हैं टॉस के लिए।
8: India up against the number one T20 side in the world in Australia. I've got the match referee Chandray Fritz and a coin toss representative as well alongside me. The coin will get passed across to Sophie Molyneux to flip it. Harman, your call.
9: Head. We'll bat first.
8: Heads is the call. It's fallen your way. Wait for the applause. There it is. What are you going to do and why?
9: I'm going to bat first. I think it's a very important game for us and we just thought let's just bat freely and set some decent total for us.
8: Coming off a win up north, you're now down here in London. Any changes to the side for this big clash?
9: Yes, we do have one change. Kranti is back in the side, place of Nandini Sharma.
8: And why is that?
9: I think Kranti has been bowling really well and I think these kind of pitches suits her. So we just thought, let's bring her back.
8: Does recent form count for anything? Because you won a series in Australia in this T20 format as well, that semi-final as well. How much do you bring in of confidence into that?
9: Well, it's a fresh day and fresh mind and definitely those games given us a lot of confidence and today's the game to just enjoy yourself.
8: Okay. We're in London but it feels like a home match.
9: Yes, definitely. I think weather is quite

0: All the magic of the home of cricket.
1: Yeah.
0: All the best, Soph.
1: Thanks, Jonesy.
0: Well, India have won the toss today and they'll be batting first in this crunch match.
2: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा. सौमित्र, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
3: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे. और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिब लिचफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉट एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट. तीन मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश, इंजरी थी, नहीं पाएंगे. सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर. जैसे आपने बोला, ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही, बट इफ इंडिया कैन स्कोर 170-180 दैट बी अ वेरी गुड स्कोर. हरमनप्रीत का बैटिंग इज लार्जली बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन अवर बैटिंग, ऑल्दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन अवर स्कोरिंग, स्पेशली मिडल ऑर्डर. और हरमनप्रीत को आज शी कमिट द मैच, कमिट द वुमन, शी हैज टू बी द वुमन बिकॉज इस तरह के मैचेस में अगेन ऑस्ट्रेलिया, इफ इज वन पर्सन दैट ऑस्ट्रेलिया फियर्स इज हरमनप्रीत. और इस मैच में उनको आज कैप्टन्स नॉक खेलना है कि 85 रन्स इन फोर मैचेस इज नॉट व्हाट द हरमनप्रीत वी नो अबाउट. तो आज का मैच उनके लिए बहुत जरूरी है और सारे टीम के लिए जरूरी है, मगर प्रेशर नहीं. शी यूज द वर्ड एंजॉय, लेट्स सी हाउ मच एंजॉय.
4: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया, आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है. नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है. पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है.
5: बिल्कुल, जिस हिसाब से जो बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच में चेंजेस चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि विकेट मुझे लग रहा कि थोड़ा सा सीम हो रहा है जैसे बताया हरमनप्रीत ने, तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी. लेकिन जो मेन इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा, क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच का पलड़ा किस तरह मुड़ता है.
2: ख्याति, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है. जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है? क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
6: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस तो किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इन टू द पिच डायरेक्टली. बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट, बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर. एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर, दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग, otherwise you will not give the cushion to your bowlers, you have to give the cushion to your bowlers also. आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी, आपको हमेशा सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स, डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहां जाके आप पावर प्ले देखें. लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में, एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है. जो द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से, बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर.
4: Soumitro, heading into the World Cup, the concern was more now it's more around the wobbly middle order.
3: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last four matches, especially you know when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point today is the big match. Or agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. But it doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega, who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat?
7: Apar Manikar Chakram Sanatale, Akashvani Dilli Ru.

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିବା ପାଇଁ।
1: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
2: अंशुघातर लक्षण गुडिक हेउछि प्रबल झाळ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुडिक हेउछि सकाळी किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाई रे विश्राम नियंतु।
2: अंशुघातर प्रतिकार गुडिक हेउछि रोगी को खोला ओ ठंडा जगह को नेई ओआरएस किंबा चीनी लुणा सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुडिक यथासंभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु। रोगी को पंखा कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
3: अपा, देखो
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: देखा वाह, मोर फेवरेट कलर।
5: सब बेले शॉपिंग।
3: आई नो मा, खर्च करिबारो बयस एटा, राइट?
6: सेविंग करिबारो भी बयस एटा।
7: आई नो बापा, सेव करो, उचित जगह रे निवेश करो। मूलधन ऊपर सुध मिलिब, जहां को पूर्णी थरे विनियोग करले सुध मिली चालीथिब। आई नो ना। आरबीआई कहे
8: करो सटीक आरंभ, टू अ फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: बन मूलक के संजय नइचे घर को जिमा चल
1: आज ये तरतर काय मन नाही लगे की
0: नाही नाही सेमती कथा नाही चंपा तू तो मोर पाखे अछु मन नाही लागबो काय
1: तेबे
0: भावुतली काले तू डरबू
1: डरमी
0: हसलु जे
1: हसमी नाही मी परा जंगली छियो डरमी का के ई झाड़ जंगल के नाही डंगर के
0: काय बाघ बरा सिंह जंगली जानवर के
1: से मन को डरमी का जंगली जंतु जानवर तो अमर साथी एका डंगर को ले थाओ एका जंगल ले बुला चला करू एका झोलार पानी पियो एका आकाश तले सोई जाओ से मन को डरमी का
0: हेले मोके डरसु की नाही
1: हाय तू के मई भारी डरसी तू तो गुटे बहुत चीता तुई मातले
0: सेतिन लागि तोके कहुतली चंपा चल घर को जिमा जंगल रे बाघ माती पारे
1: हाँ एटा चिन्हा बाघ तो मातले मातु ताके बॉस करवा के मुई जानी छी
0: ए चंपा देख तो डंगर मथाने केमति जन्म उठी छी आय पाको को छी आय
1: काय मुई तो तोर पाखरे बस छी
0: नहीं आठ के पाको कुछ है
1: होय हेला घुची बसली
0: सतलो चंपा ये झुलार कला घुमर पानी परी तोर चिकन देह देहरे नाली कस्ता साड़ी एक पखिया खुसारे कुरे फूलो ई जंगल ई आकाश ई धरती परी तोके भारी भलो लागुसी तुई मोर उठे जंगली फूलो सबु वेले ताजा सबु वेले वासना भरा
1: तुई भी मुके भारी भल लगसी तोरी चौड़ा छाती बलपन बाहु कांधे धनुतीर ओठरे बैंसी भारी भल लगसी ई जंगल परी तुई भी खूब सरल खूब सुंदर
0: हाय तुई ठीक कहिसु ई जंगल रे आमे बंची छे खेली छे बढ़ी छे ई जंगल देहरे आमे हजी जिमा ई जंगल आमर घर इटा आमर संसार ई जंगल आमर जीवन
1: ई डंगर आर छोलार परी तोर मोर खुला मेला जीवन बाधा नहीं बंधन नहीं डर नहीं कि संकोच नहीं इठी तुई मोर राजा मुई तोर रानी
0: ए चंपा देख तो डंगर मथाने केमति चैतीर जन ऊपर के उठलानी कितने सुंदर दिसुची हाँ ई जंगल रो ई जन राति आ
1: जंगल माता
0: चल जीमा अंटी हाथ दे सलपी आमे भी सरटी राती।

0: अरे शुक्रा कहीं जाई थिलो
1: ये जंगल के शिकार करते
0: जंगल रे किस शिकार करबू बाघ भालू बारा तो देखते नहीं गोटे कुटरा भी नहीं
1: हरे गुंडरा भाई सात कहीचु सारा दिन जंगल रे घुरी घुरी गोटे किसी शिकार नहीं पाई केंती खाईमा केंती चलमा सही चिंता रे मोर दिन जाऊचे
0: जंगल आर कहीं जे जंतु जानवर रहिबे सहरिया बाबूगा ये जंगल टाके लुटी करी नेले गतरे पत्र नहीं फूल नहीं कि फल भी नहीं झोलार जल सुखी जाइछि वर्षा बादल भी देखा नहीं लुकमान कहुछन कला हणी रे मरुड़ी पड़छे चासबास नहीं लुकमान खाइबा को नहीं पान
1: सरकार जंगल नहीं काटबे के आईन करछन जंतु जानवर शिकार करती मना करछन
0: सरकार महापुरुष कथा नहीं मानले जियल हबो जर्माना भी हबो
1: अरे भाई सरकार आज्ञा जेते नियम कानून सब खाली आमर पर सरल आदिवासी मान कर लागी सहरी बाबू लागी ना
0: ठीक कहिछु शुक्रा जंगल लुटबे बाबूगा मार खाइमा आमे जंतु जानवर शिकार करबे से माने दरगा बाबू हाजत पठाबो हमको
1: अरे देख तो गुंडा भाई उदिया भाई यार आछे
0: उदिया भाई काई जाइतिलो
2: ढंगर के जाइथिनी पोडुचास के हेने किसकी
1: किस लागी
2: गुटे सरकारी बाबू आसी मना करी देला सरकार महापुरु आईन करी छन जंगल जले करी आर पोडु चास नाही करबो
0: सब तो सरकार नाही कले आमे खाइमा किस चलमा केमती सरकार महापुरु से कथा नाही बुझन
2: बाबू आज्ञा के मुई से कथा पचारी थिनी शिकार बंद करले काठानते मना करले एबे पोडु चास के मना करू छन आमे गरीब आदिवासी लुकमान बचबू केमती बाबू आज्ञा कहिले मुई यार किछि नाही जाने सरकार हुकुम करी छन मुई तुमके मना करते आयली तार कथा सुनी मुई मन मारी घर को जाऊसे
0: महापुरु आमो कपाले जेटा रखछे सेटा हबो अंधार हैला चाल सुब्रा जीमा

0: चैती परब के केते दिन अछि कहनिनी?
1: हाटी अनेक दिन गनिनी।
2: चंपनिनी रे मन नाइ लगसि रे मंगली, दिन राति खाली पदियार कथा भावुची।
0: भाव नाइ केमती पदिया परा ताके चिकिसी रे, ताके चीका बा हबो अगला चैती परब के।
2: सेई चैती परब रे राति डंगर मथानी जह्न उठी पड़ा गाँव रोक मान भोजी भात खाइबे, सल पीबे, घुसरी मांस खाइबे, सारा बनमूलक झुमि झुमि नाचब।
0: चंपानिनी के आमे सजेई थमा, पादरे गुंजरी बाड़ी, देहरे कस्ता साड़ी, एक पाखिया खुसारे कुरेई फूल, नाकरे फूल, बेकरे कांजर वाली, चंपानिनी के बढ़िया साजब।
2: आर चंपानिनी सांगरे आमी सबू अंटी रे हाथ दे नाची नाची गाइमा।

0: हेलो हे सौकरी मुंदे सलब दे तो
1: सलब आर नाही गो सलब कछु सुखी गलानी आर रोसो नाही आसी
0: डंगर रे आर चासो नाही हुए काठो बाउसो भी नाही मिले कर्मा किसकी मोर मगज के आर बुद्धि नाही दिसे
1: हाणी रे मुंदे जाऊ नाही खरे भी माडिया नाही किंती कर्मा काली राती रुखिया नाही की पिया नाही सारा दिन जंगल ले खुरी खुरी खंदा टिके भी नाही मिले
0: पदिया जाई शिकार करते लुची लुची जेटा मिलबो शिकार करी आनबो आसु देखी की सानुची
2: नाही लो बा सारा जंगलटा खेदी देली गोटे कुठरा भी नाही पाइली संज हेलारू खाली हाथ पलि आसली
0: मकरुजानी कहूला ई पड़ा गाँ के पाटखंड महापुर कूप पड़ीछे पूजा पाठ करी कुकड़ा बलि देई महापुर के शांत करबाकु हब नाइले महापुरु सारा गाँ के खाई जीवो
1: जार घरे जा थिला सबु तो महापुर के देई सारी छन आर तो बाकी किछि नै
2: हां भूतिया पड़ा कुड़बुल गुमा तितली गुमा और केते पड़ा गार लोक मन शहर के पले गले नी केते लोक मन को चिता झिंकी नै छी
0: बाबू लोक मन आई थिले से दिन सवारे एते कथा कहले केते बड़ बड़ बाबू गा

0: चाकरी सौत को चुप दिया मुके छड़ी तू शहर के चली जाऊ
1: होई चंपा मुके जायते हबो मुखी गुड़ारी इंद्रावती उपरे सरकार गुटे खूब बड़ बंध बांधुचे केते बड़ बड़ जंत्रपाति दिन राति कामरे लागिचे केते लोक काम करूछन मुके भी गुटे काम मिली जीव
0: सहरी लोक मन जमारे भल नाही रे पदिया गुटे कथा कह गुटे करन अमर जीवन के नहीं खेल खेलन जंगल लो जंतु जानवर नु भी बेसी खतरनाक से बाबूगा मुके मुके भारी डर लागुचे
1: दरबार किछी नहीं लो चंपा काम मिली गले मुई छुट्टी नेमी तो कैसे देखी जिमी सर नु तोर लगी काचो आर फीता भी आनमी हाँ।

विचारों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के

0: आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल्स एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है।

0: श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी

0: यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad.

अभिषेक अभिषेक अभिषेक अभिषेक कोठी लुची छ तमे अभिषेक कोठी लुची छ तमे तो सारा स्तूप भीतर बाहर आस अभिषेक प्लीज प्लीज अभिषेक बाहर आस तमे देख तमको नहीं आसी पोलास्ट्रन जहाज पानी सियार काटी काटी केमती आगे जाऊछि तो सार मरुरी केवल मोर कही एकाकिनी तमरी प्रतीक्षार तमे तमे कौटी लुचिच सतर अभिषेक कौटी लुचिच तमे एमती एमती लुचकाले खेलिबाको कौन तमको भल लागुछ सतरे अभिषेक तमे तमे आसीथिले कौन एमती हजि जीवा पई ना दक्षिण मेरुर रहस्यमय भूगोल को अनुसंधान आलोक उद्भासित करने को क्या खोजु तमे अभिषेक आंटार्क्टिकार लुकायित खनिज संपद ना तुषार कन्या को हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष तलर प्राग ऐतिहासिक मनीषर कथा कितने थर कही हसरे उड़े दिखती कहीं ना कहीं तुम तुषार कन्या जीवन्यास फेर भारत को पोलास्ट्रन जहाज रे किंतु किंतु किंतु तमे कौटी अभिषेक कौटी तमे तुषार मोर रही निर्जन दीपरे आउ एक कन्या तम पाई अपेक्षा कर रोचे अभिषेक हुए तो आज को अनेक अनेक वर्ष पर पुणी खोजी पाइब मत आमको प्राय प्रिजर्वेशन नहीं जीवन्यास शुणब ये आमर ये अभियान कहानी हाँ अभिषेक हाँ।

0: Well, ladies and gentlemen, silence please. आमे जो अभियान प्रस्तुति उद्देश्य रे एथि एकाठी हेछे से बेसर मु आपन मन को टिके सूचना दे दिए आपन मन समस्त जानंती आजिरो दूषित जनबहुल भूभाग ठारु दूर रे दक्षिण गोलार्धर 66 डिग्री रु आरंभ मेरु बलयर मध्य रे लुचि रहितबा दक्षिण मेरु रे आम देशर अभिजात्री दल बारंबार पदार्पण करी स्थायी केन्द्र स्थापन कले ए महादेश होची पृथ्वीर सबुठारु शुष्क सबुठारु शीतल आ उच्चतर भूमि केतक स्थानर उच्चता समुद्र पतन ठारु 2300 मीटर भी अधिक एही महादेशर सर्वोच्च तापमात्रा हेत केबे 60 डिग्री फॉरेनहाइट रु अधिक हेनी मात्र जो 6 मास राति हुए सेतबेले तापमात्रा -125 डिग्री फॉरेनहाइट तळकु भी खसी आसे मात्र आमे जे फेब्रुवारी आ मार्च मास रे जाउचे तेणु बरफ तरळी जाइथिबो खरा भी पड़ुथिबो आ सेतबेले दक्षिण मेरर 6 मास दिनटी आमे माने खूब भल भाबरे उपभोग करि परबा ना कोन कहजुन आपण माने हां सुनंतु आपण माने समझ जानते सेतकार परिवेशटा कोन सेतिपई आपण माने समस्त प्रस्तुत हई रहबा दरकार कोन प्रीति हां मो कथा वडा माने केमती वडा अप्रीतिकर लागुछ नै
1: ना ना सर श्वेता इज वरीड अबाउट हर फूड हैबिट ता खाइबा पीबा ने से चिंतिता ता छडा शी लव्स आइसक्रीम
0: ओ आइसक्रीम श्वेता तुम निश्चय जानो हम खाइबा पीबा जिंस आमे सांगेरे नै कि जाउछु आउ आइसक्रीम कारखाना आई मीन टू से बोधे सेठी नाही खाली आइसक्रीम काहे की अन्य कोनसी कारखाना भी सेठी नाही श्वेता
2: सेठी पे तो से अंचल प्रदूषण मुक्त किंतु सर आमुडसेन दक्षिण मेर रे पहुंचतिले 1911 मसिया डिसेंबर रे ए भीतर कोन सेठी किछि परिवर्तन हेनी
0: परिवर्तन माने वेलिंग सोसेन 1819 रु 1822 मसिया भितरे जलपथ रे अंटार्कटिका परिक्रमा करबा पूर्वरु कैप्टन कुक अवश्य 1773 रे एही महादेश रे पदार्पण करथिले मात्र दक्षिण मेरु बिंदु रे प्रथमे पहुंचथिले आमुनसेन 1911 डिसेंबर मास रे या परे परे स्कॉट आदि अनेक अभिजात्री एटी पहुंचबा को उद्यम कर

0: बड़ कष्टसाध्य थिला से यात्रा
1: आजिकाली बोधवे सर सेमानंक पर कष्ट जंत्रणा भोग करिया को पड़नथिबो
0: ना सेमानंक तुलना रे तमरे अभियान अत्यंत सहज अवश्य शारीरिक परिश्रम दृष्टि रु मु कहूची सेमाने जाउथले दुस्साहसी आविष्कारक मन नै
2: होयरेज आमे जाउचु अनुसंधिच्छ वैज्ञानिक सत्य संधानी प्रवृत्ति नै
0: एक्जेक्टली एक्जेक्टली वास्तव रे वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ होईची गत 30 वर्ष हला हाँ किए श्वेता श्वेता पत्र छुआ ना सेठी खाइबा को मिलबो कि नै
1: ना सर मते चिड़ई बटा एमते समस्तक गोटे अभ्यास सर मो ओशनोग्राफी रा स्टूडेंट मो कोन जानिनी सेठी प्रचुर परिमाणर सामुद्रिक माछ मिलंती बोली मेरु समुद्र रे थिबा चिंगुडी जातीय क्रिल सारा पृथ्वीवासीक पई सबटु भलो पुष्टिकर खाद्य हेबारे बाधा किछि नै लुणी पानी तो लुणी पानी सारा पृथ्वीर 70 भाग मधुर जल सेठी बरफ आकारे रहिछि
0: हम यू आर राइट किंतु केवल मधुर जलपान करी जीवन धारण करिबा आमो भली मनुष्य मानक पक्षर असंभव एणु जहाजरे भरपूर खाद्य सामग्री नहीं आमर को अभियान करिबक पड़िबो आफ्टर ऑल कोटि कोटि टन बरफर पहाड़ तले लुचि रहिथिबा खनिज संपद खनिज तैल आ अनेक वैज्ञानिक तथ्यर उद्घाटन आमर ई अभियानर उद्देश्य ता सहित फसिल और जीव जगत संपर्क अभिषेक तो किसी गोटा फैंटासी रही
2: आपन सर तक फैंटासी कही परंती आमर कंप्यूटर चिप सुमंत मो सहित संपूर्ण एकमत
3: यस यस आई एग्री विथ यू किंतु खोजिबा कामटा तुमर कारण ए अकर्मण्य शरीर आउ ए व्हील चेयर नहीं ए तुषार मरुरे तुमानंकु मु विशेष किछि साहाज्य करि परिबिन
0: ओके विल सी बट आवर प्लान एंड प्रोग्राम्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल ओके बाय सी यू टुमारो आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज
4: अजीदा तुषार असतन जी
5: आई नो
6: भाई भाई एगुडा सुणु सुणु मो छातीटा थरलाणी मु आ जीवी कोन किंतु से बरफ माने दक्षिण मेरुर से प्राग ऐतिहासिक बरफ तार आवश्यकता निहाती थिला मु सुरापान पई
2: आमे नै आसिबु अरे के कोतला तोते आगे जिबाकु
6: के आउ सेई चंद्रकला
2: चंद्रकला
6: ओहो सेई मोर प्रेरणा दात्री प्रेमिका मते कहिला तमे जने साहसी युवक खाली जियोलॉजिस्ट हे चाकरी चाकरी बोली एठी सेठी घुरु बुलचो काहे कि अंटार्कटिका गवेषणा अनुष्ठान रे शामिल होन
2: कोन भूल कहिला एमती मामूली जीवन अपेक्षा ए गवेषणा परिषद रो सभ्य होबा कोन खराब कथा
6: हेले भाई आपे बंचिले बापर ना मरी सुखुआ हेले आउ किया आसीबो पचारिबाकू
1: रवि मु चंद्रकला को लिखि देबी से आसीबो कोटे बड्डा फूलमालानी तुम मृत शरीर रे दे शेष आसु विसर्जन कर जीव तमे जम्मा व्यस्त होनी
6: हसनी हसनी तमे माने हसनी मते भारी कांदो लागुची अरे मते तुम माने जानिन पिला दिन रु बाप मां को परिचय मु जाने नी अन्यर दया रे पाठ पढ़ी छी आउ सेई गोटाई चरित्र सेई चरित्र मते एते दूर आनी परिछी
1: के चंद्रकला
6: हां सेई मोर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड
1: चमत्कार आमे सब अपदार्थ निज जीवन टा को तो गाइड करि परलुनी आउ काहा को गाइड करिवो केमति सतरे तबे आमे को तांको ठिकाना को हंतु आमे तांको देखा करे आपनको ए जटिल परीक्षा रु ओहराइ नेबार प्रचेष्टा करिवु
2: ए रवि सुन तू एते भीरु कापुरुष नहि जे ठीक युद्ध समय को पछ घुंचा दबु मने रख पछ घुंचा नहि वीरर जातके
6: हां हां तू ठीक कहिजु सुनंतु आपन माने चंद्रकला किछु कहंतुनी ए सब जानले से मते घृणा करिवो भीरु कापुरुष कहि हतादर करिवो
2: ए ए ए सत कहिलु चंद्रकला नामक कि अछि ना एंत खाली स्वप्न कल्पना
6: काई काई काई तू कोन भाउछ मते भलो पाए पई केई नाथी ह अरे मु कोन एड़े अपदार्थ अरे बाबू चंद्रकला एबे भी भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रे साइंटिस्ट ए देख विजिटिंग कार्ड ने ने रख
1: तळे टेलीफोन नंबर भी अछि भलो हला तांको अवस्था जणाई देबा रवि को आकुल हृदय रो व्याकुलता प्रकाश कर देबा
6: ना आउ दरकार नै मु प्रस्तुत
1: आउ जदी किछ असुविधा हुए तबे फोन टा कर देबा ना ना अंटार्कटिका रो वायरलेस रे कथा हबा
6: नहले मु जदी न फेरे ताहले तकु जणै दबो
7: अरे अरे तुम माने एठी एमती बसी गप जमैछ चलो चलो थ्योरी क्लास रो समय हि गेलनि जे
3: अवश्य जीवन प्रति समस्त तृष्णा।

0: कन्या नुहें मो विषय आपण किछि जानि नहंती हे त जानिले मते आपण घृणा करिवे
1: मो विषय तमे बा कोन जानो ना तमे केम जानिमो जानिबा दरकार नै एई तो मात्र दुहे दिहिंक निकटरे उन्मोचित होइलु अतीत को जानि लाभ कोन वर्तमान आम पई सब किछि भविष्य भी लोड़ा नै
0: ना भविष्य निश्चय हमर दरकार अतीत को भूली जीवा उचित निश्चय किंतु भविष्य स्वप्न हजार एकांत काम्य भविष्य।

0: Hello? Hello? Hello?
1: Sir?
0: Hello? Nobody is giving any messages? Hello? Hello?
1: Sir, ee monitor ko dekhantu asantu eti.
0: Ha?
1: Samaste nije nije bata khoji. Bes sadar pare agei chalchanti.
0: Are sathe to Deepak to siddha parvat upar ko agei jauchi. Sathar tar trirang pataka, jatiya pataka.
1: Ei sir, dekhun dekhun gote gatu ko avoid kari se kemiti jump kari agei chal jauchanti. Ei dekhun sir.
0: Are ba, se to mane efficiently jump kari chali jaichi.
1: से पर्वत शिखर रे पहुंच गले सर
0: आउ सेठी भारतीय जातीय पताका को सदर पे उड़ेले आमो पाई ए सुनो सुनो कौन मैसेज दो सुनो हां
1: हां कौन तू कौन तू
2: हेलो एटे दीपक स्पीकिंग अदुर रे आउ रे दीपो म देख परती सेठी रुसिया रो लाल झंडा उड़ती खुद सही से कोलमेन रे दीपो जा के आदि 2 वर्ष रो रुसिया अक्षर करती अंटार्कटिका बेसी दिन न भी प्राय 2-3 दिन न बाटे परे चारि आड़ के बरफ न पहाड़ मा हेलो समतल तो देखा जाऊनी अच्छा मुझे बरफ रु किसी और भूगर्भ रु किसी सांपुन मध्य रोचे ओके ओवर
0: सुमंत सी देखो सर ये रेड लाइट दब तो कुछ कहेंगे देख लो देख लो देखो
1: सर अभिषेक बाबू का स्कूटर गोटाए तुषार फाटो निकट रे
0: हां ताको जणाओ से आगु को न जाऊ बी केयरफुल बरम फेरी आसु छे
1: अभिषेक बाबू स्टॉप स्टॉप देयर आओ आगु जाऊ तो नहीं बरन फेरी आसु तो
2: आगु को जीवार तो प्रश्न नहीं किंतु पछु को जीवार उपाय नहीं हेलो डू यू गेट मी मो आगे पछरे देखि विराट तुषार फाटो से फाटो धीरे धीरे पड़ी जाउ थोर मु देखि परछे डू यू गेट मी हेलो हां स्कूटर भी तळ को दबी दबी जाउ छे स्कूटर भी तळ को दबी दबी जाउ छे
1: सर अभिषेक बाबू का आगे पछरे दीटा बड़ो तुषार फाटो सेथिरे तांको स्कूटर दबी दबी तळु चली जाउ
0: ओ नो सुमंत
1: सर
0: तमे मेडिकल पार्टी और रेस्क्यू टीम को खबर दे हेलीकॉप्टर ने सेट को जीवा को
1: सर
0: बी क्विक
1: सर
0: आई एम मूविंग बाय माय ओन स्नो स्कूटर हां गिव मी दैट वॉकी टॉकी गिव मी
1: हां सर
0: बस अभिषेक अभिषेक आर यू

0: अभिषेक अभिषेक आर यू गेटिंग मी सुन तुम्हें फटा आरोप को अंतर पकाई निजी को बांध लियो क्विक क्विक अभिषेक प्लीज डोंट बी नर्वस हैव पेशेंस अभिषेक हैव पेशेंस आम खूब शीघ्र पहुंचुचु हाँ
1: Yes, Captain. Come down, come down.
0: Apna, apna rope pakantu. Ei phata bhitar ko. Quick, quick, Captain, quick.
2: Please be quick. Abhishek, shuni parcha Abhishek. Ha, ei rope dhir upar gasari. Quick.
3: Asa Abhishek. Asa. Abhishek. Ei rope dhari uthi asa. Ame samasta tam ko apekha karuchu.
4: Asa bhai. Asa. Am kemti nirash kari tumhe. Tumhe haji jaani asa.
3: Na Abhishek bhai. Na. Tumhe pheri asa. तुम बिना हमारे यात्रा से विफल हो जाओ अभिषेक भाई फेरी आसो तुम फेरी आसो
5: आई एम फेलिंग सर आई एम फेलिंग प्रीति मु पारुनी तुम सब कौटी मु उठी पारुनी प्रीति मु पारुनी

0: कौन भावुछन्ति प्रोफेसर ज्ञानरंजन महापात्र आई मीन टू से ये कौन बंची पारे
1: बंचिबा न बंचिबा कथा एबुठ तो कहि होबनी
0: आ
1: ताको आगे बरफ भितरु साधारण टेम्परेचर को अणा जाऊ तार रिस्पोंस देखा जाऊ तापर सिना विचार करा जिवो
0: आई सी
1: सिस्टर प्रिपेयर द ओटी
2: यस सर
1: रूम रो टेम्परेचर 99.4 इन हीट रखंतु कुत्रो श्वास यंत्र ठु आरंभ करी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आ अन्य अन्य जिन सब रेडी करंतु म आसी
2: सर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन को 99 डिग्री फारेनहाइट को नै आसी
1: हां ताई करो ईसीजी ईईजी सब ठीक करनियो आसंतु डॉक्टर महांति ब्रिंग द बॉडी इनसाइड द रूम
3: सर रवि श्वेता तुम्हें बॉडी के नहीं उठी चल जाओ धीरे धीरे ग्रेजुअली नब से बरफ को तरल दिखे डाक
2: ओके सर जाऊँ सर
3: थैंक यू

0: थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर महापात्र, थैंक यू वेरी मच।
1: दैट्स ऑल राइट।
0: आपण आज एक नव जुगर नव अध्याय आरंभ कले।
1: नो नो नो नो, मोर एथिरे विशेष किछि कृतित्व नाही, बरं किछि दिन तळु एई प्रकार कार्य अमेरिकार वैज्ञानिक माने करि सारिछन्ति।
0: इज इट तमने आपण कोन भाबुछन्ति से माने एई अमेरिकार आविष्कार करथिबा रुबी भली ये एक जीव
1: बहुत हे सैया। दुईटी जाक जीवर गठन प्राय समान, मुंड छोट, शरीर बेस बड़ लंबा, आउ मांसपेशी खूब हृष्ट पृष्ट, गोड़ दुईटी लंबा किंतु हाथ दुईटी छोट, मुहरे दुई धाड़ी दांत, आउ नाकटा चेप्टा, छोट कपाल, छोट मस्तिष्क, चिबुक नहीं कहले चले।
0: तेबे ये कौन बानर जातीय ना नर, माने आस्ट्रोला पिथेक श्रेय ना प्राक नर जातीय प्रोटो ह्यूमन?
1: मोर जे दूर मन हुए ये प्राक नर श्रेणी, एमाने प्राय 30 लक्ष वर्ष तलर जीव।
0: तेबे 30 लक्ष वर्ष तलर जीव आज पुणी बंची पारुची?
1: वेल, तार जैविक मृत्यु हो नथिला, पैथोलॉजिकल डेथ इज द पॉइंट। हठात बुलबुलु है तो तुषार झड़ रे से पोती है, श्वास प्रश्वास बंद हो जाई, हिमिकृत अवस्था रे ए जावत निर्वाक निस्तब्ध हो पड़ा।
0: ता कथा में बुझीबा केमिति?
1: एठी तो स्पीच थेरापिस्ट किंबा साइकियाट्रिस्ट नहंती, किंतु मोर विश्वास ताकु छोटो छुआ परी धीरे धीरे अक्षर चिन्ह ही पढ़ेले से हुए तो पिकअप करन, आमरी भाषा रे से कथा कही पारिब।
2: सर सर,
0: व्हाट हैपेंड सोता?
2: सर से बड़ा उत्तेजित है उठे छी।
0: 30 लक्ष वर्ष सोइबा परे उत्तेजित हवाटा स्वाभाविक।
1: सुनंतु डॉक्टर महांती मु कहि ताकु किछि सेडेटिव दे सुवाई पकांतु, से न भाबु ताकु बंदी करी एठी रखा जाय छी बोली। दैट्स इंपोर्टेंट।
0: सुनो श्वेता,
2: सर
0: एठी हमर स्पीच थेरापिस्ट नहंती, तमे ताकु अक्षर सिखाओ ओडिया जेमति से कहि पारे। छोट छुआ सीखेबा पर चित्र करी बारंबार कही कही तमे ताकु सिखा, से तमको तार बंधु भाविले आपे आपे कथा को आसिक जीव।
2: श्योर सर, निश्चय कहबी सर, निश्चय करबी।
0: थैंक यू।
2: ताकु कथा कहि परले मु तो सबटु बेसे खुशी हेबी।
1: ओ श्वेता देवी, ताकु तोर गोटे ड्रेस बा साड़ी पिंधियो दियो, से जे झियोटे, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड?
2: किंतु ताकु हमें से बा ताकु बोली न कहि किछि ना धरि डाकिले होनता नी।
0: गुड, भलो, माने खूब भलो सजेशन। तबे तमे कहो कोन डाकिले भल लागिवो?
2: सर ए बरफ देशर छियो से ताकु जति तुसार कन्या डका जानता।
1: चमत्कार चमत्कार नाटे।

0: तुषार कन्या तुषार कन्या तुषार कन्या तुषार कन्या मु तते खाली तुसी बोली डाकिले चलिबो तुसी तुसी तो मते चिन्हे पर्छ तुसी हां हां कथा कह कथा कह तुसी कथा कह कथा कह हां कह मु किछ बुझे पनि तो कथा मो कथा कोन तो किछ बुझे परनु
1: जा जा जा जा
0: जा मो परबिनी एडा किछ बुझुनी केते बुझेबे मोर
2: आ पेशेंस श्रद्धा है पेशेंस तमे जो दायित्व नै छ ये एको जुगांत करी दायित्व यस कैरी ऑन श्रद्धा कैरी ऑन कैरी ऑन
0: ओके सर नाही नाही नाही नाही तो से मु किछ हैरान करबिनी मु तो सांग बुझलो मु तो सांग आ पाख कुआ देख तू चिंती मु भी चिंती तू मो परी गोटे छियो तू मो समान हां बुझि परछुटी बुझि परलु कथा कह तुसार कन्या कथा कह
1: के को क क क क क
0: कोन हिला ए कोन तमार भाषा कह कह मो सते कहिलु कह प प प प कह कह प प फ क कह हां क क नहीं नहीं सेमती नु है क प प प फ प फ ब क क हां क क क प एमती कह ओठ जोड़ी खोली दे ए ऊपर ओठ रे तळ ओठ जोड़ी दे खोली दे क प प प एमती तळ ओठ टा को हां क क हां हां हां कह कह बा बा कह हां आ देखिलो देखि ए जीभ रे पवन
3: पटी ना प्रीति अभिषेक मिलिबार आउ टिके हेले भी आशा नाही बहुत खोजा गला बहुत तळु को भी खोजा गला किंतु
0: मु जाने से हम समस्त को ऊपर अभिमान करी चली गले अछि गले लुचि गले से
3: ना प्रीति ना से कह ऊपर अभिमान कर नांती बरम तमटु जति कि स्नेह सौहार्द्य पाई छंती ता तांको आत्मा को तृप्त करथिबो से तक न पाइथिले हुए तो ठीक हेन थांता तमाय जे निज को दोषी बोली भाव थांतो
0: मो ऊपर अतृप्त मणिष पा का को तृप्ति देव विचित्र सृष्टि विचित्र दुनिया रे गति
3: अरे ता न होइतले ए तुषार कन्या मिली थांता केमती मोर मन हुए अभिषेक विज्ञान इतिहास रे अमर ही रहइबो ए आविष्कार सह तार आत्मस्वर्ग सब बेले लिपिबद्ध ही रहइबो
0: जान रवि मोर मन हुए एबे भी अभिषेक मो पाखे पाखे अछंती मते मते एक कथा कर से कथा करनी कहि सब थ्री निर्देश से चली छंती
3: प्रीति ता तो स्वाभाविक ता स्वाभाविक प्रीति शरीर ऊपर मनर प्रभाव सबुट बेसी
0: आ से मानसिक स्तर रे पंची बाही जीवन
3: हां एको मेंटल वर्ल्ड कथा बहु मनीषी कहि जाई छंती
4: जान रवि और प्रीति आमे दीपर एक ऑयल डिपॉजिट रो संधान पाइछि अभिषेक जोठी हजि गला ठीक तारि तळु तैलखंड संधान मिलिछि
0: सेति पई अभिषेक दिग्दर्शन दे चली गले तुसर कन्या आ तैल खणी रो संधान तंकर अनुपत्य अवधान सर
4: देयर इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम अंडर दिस
3: चमत्कार सर चमत्कार आम अभियान सब दृष्टि सफल हेछि हेले केवल जहा अभिषेक आमठ दूरे गला
4: नाय नाय नाय रवि अभिषेक एठी अछि एठी रहिबो मु डिसाइड करछि एठी आउ गोटे स्थायी केन्द्र प्रतिष्ठा करबा पई आ ए केन्द्र ना हबो अभिषेक
3: सर एटा हबो अभिषेक पई श्रेष्ठ श्रद्धांजलि
0: तेबे तेबे से केन्द्र रे मते रहिबा को अनुमति दियंतु सर ए शंख थबळ तुसार मरुरे मु एका के अभिषेक को छाड़ जाई परिबिनी
3: प्रीति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।

0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनचंदी आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। समुद्ररु आकाश पर्यंत भारत सुरक्षित एवं आत्मनिर्भरता दिगरे अग्रसर। आकाशवाणी आजि 135तम मन की बात देशवासीको संबोधित करि कहिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, परिवेश कार्यान्वयन स्वच्छ, दायित्वपूर्ण ओ समानता उपरे पर्यवसित हेबा उचित। सेसल्स नेशनल आसेम्ब्लीरे संबोधन करि कहिले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रीको देशर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान गार्डियन अफ द ब्लू होराइजनरे सम्मानित कला सेसल्स। राज्यरे आज शेष होइछि एसआईआर प्रक्रिया। स्वच्छ, निर्भरयोग्य ओ त्रुटिमुक्त भोटर तालिका प्रस्तुत करिबा एसआईआर अभियानर मूल लक्ष्य। राष्ट्रीय पोल्स पोलियो टीकाकरण अधीनरे आज देशव्यापी टीकाकरण अभियान आरंभ। आसंता मंगलवार पर्यंत राज्यरे पोलियो बुंदा प्रदान अभियान जारी रहिब। आसंताकाली स्नान पूर्णिमा, दुर्लभ गजबेशरे श्रद्धालुंकु दर्शन देबे श्रीजीव। पुरी श्रीमंदिरे चूड़ान्त पर्यायर प्रस्तुति। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम 65तम जातीय आंतरराज्य वरिष्ठ आथलेटिक चैंपियनशिप उद्यापित। आसंता सेप्टेम्बर 19 अक्टोबर 4 तारीख पर्यंत जापान एशियन गेम्स थिला एक गुरुत्वपूर्ण योग्यता पर्याय। भारत आयरलैंड पुरुष टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट श्रृंखलार द्वितीय तथा चूड़ान्त मैच भारत को गोटे रन में परास्त कर आयरलैंड श्रृंखला विजयी। आईसीसी महिला विश्वकप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता रे भारत को 2 रन रे परास्त कला ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल रे परस्पर को भेटिबे ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज एवं इंग्लैंड दक्षिण आफ्रिका। एवं राज्य रे मौसुमी वायु सक्रिय, आसंता गुरुवार सुधा बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना नै पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना। मुख्य संवाद आज पय एतिकी, शुभरात्रि, नमस्कार।

0: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के
1: प्रचार करुटी ओडिया एल्बम गीत कार्यक्रम प्रथम गीत गायछन्ति सोहम।

बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, तीर जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का चार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, तीर जिसके गाता है, उसके

0: अरे जहां कह तू पैसा उठीगला यार।
1: हाँ खंडे बढ़िया नाचो नाची
2: वाह तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଲିନୀ ରଜୁରକରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ। ଶିଳ୍ପୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ରାଗ ନଟ ଭୈରବ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ହାରମୋନିୟମରେ ଅରବିନ୍ଦ ଥଟ୍ଟେ, ତବଲାରେ ସୁବାସ କାମତ, ତାନପୁରାରେ ଦୀପକ ନାୟକ ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ଫାଟକେ। ଶ୍ରୋତାନ୍ତ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି ଅନକହି ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। ମହିନେ କେ ଆଖରୀ ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତଜାର ମଲ୍ୟାଚଲ କେ ଆଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ ହୋତୀ ହେ ମନ୍ କି ବାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मल्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
3: RBI कहे
4: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।

ओम सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्ज्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता से ही परमेश्वर प्रीत्यर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरि हरि समस्ते सत्य को ग्रहण करी असत्य को त्याग करंतु।

हे स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सन्मार्ग दर्शक सर्वनायक परमेश्वर आपण कृपा करी सांसारिक ऐश्वर्य और मुख्य प्राप्ति पाई आम को उत्तम धर्मात्मा आप्त विद्वान मार्ग रे नियंतु हे सुखल सुखदाता परमात्मन आपण आमर समस्त ज्ञान और कर्म विचार और आचार जानती आम ठारू कुटिलता।

सुखी किए आश्चर्यम दुनिया आश्चर्य कौन कंथा प्रकृत बाट किए आउ दैनन्दिन वार्ता बा घटना कौन आज्ञा भीमसेन कही पारे ना मृतपत पड़े भीम आसवार विलंब देख अर्जुन को डाकिले धर्मराज रे अर्जुन देख लु भीम भाई तोर कड़े जापर्त आसला ना जिते भीम अवस्था को लक्ष्य कले अर्जुन चलिए भीम को खोजापी पूर्ववत से बग पक्षी कहू मोर चारोटी प्रश्न उत्तर दि जिते अर्जुन कही न पारे से मध्य रही क्रमान्वय नकुल आ सहदेव समस्ते जा पहुंची समस्ते मृतवत से पड़ी रही कही कही पारे ना यही समय धर्मराज खोजी खोजी से पहुंचे चारि भाई मृत शरीर को लक्ष्य कर धर्मपक्ष कह हो धर्मराज मु चारोटी प्रश्न उत्तर दि तेब जा तुम्हें पा नब कौन से प्रश्न ना को मदते कि आश्चर्य कह पंथा काच वार्तिका बदन चतुर प्रश्नान मृता जीवंतु बांधवा दुनिया सुखी किए दुनिया आश्चर्य कौन ये दुनिया प्रकृत पंथा बाट किए दैनन्दिन घटना कौन ये धर्मराज कहते व्यास संस्कृत कहे हो धर्म बक मो प्रश्न आपण उत्तर दौर दुनिया सुखी किए अष्टम भागे प्रवासी दिनक भितर पांच घड़ी रे हौ आठ घड़ी रे हौ शाग पखाल मुठी जे घरे खाए अंदरुणी करज करे नाही अप्रवासी विदेश यात्रा करे नाही विदेश को जाए नाही करज करे नाही घरे शाग पखाल करी मुठी खाए दुनिया रे सुखी किए द्वितीय प्रश्न तार उत्तर दुनिया रे आश्चर्य कौन ना हन्य हनी भूतानी गछंती जम मंदिर शेषाज भी तंग मिछंती हे धर्म बक ये दुनिया रे प्रकृत आश्चर्य होची गोटे कथा प्रतिदिन मनुष्य आखि आगे सहस्र सहस्र लोक मरीबार देखी सुद्धा बंची रही लोक विचारती आम चिरंजीवी हवा यह अति आश्चर्य कथा याठ भाई आश्चर्य किसी ना सतनामिष ये तृतीय प्रश्न उत्तर शुण देखिले तर्क प्रतिष्ठा श्रुतया मन रखंतु हे धर्म बक वेद स्मृति ओ पुराण रे नाना प्रकार विभिन्न पंथार उल्लेख अछि नाना मुनि नाना मत देइछन्ति मध्य किंतु महाजन माने जो पंथा बा जो बाटे जाइछन्ति ताहि प्रकृत पंथा आमर एही कथा ने कर्मयोग भगवत गीतार मध्य अछि जत ददा धरति श्रेष्ठ प्रमाणम गुरुते श्रेष्ठ व्यक्ति माने जहा जहा करती ताकू देखी इतर लोक माने ताहा करी थांती श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ को प्रमाण बोली कहती इतर लोक तार अनुसरण करती इतर उपनिषद यही पाई कहते जानी अनवद्यानी कर्माणी तानी सवित ज्ञानी नो इतराणी ज्ञानी अस्माकम सुचरितानी तानी तो या उपस्यानी नो इतराणी अर्थात संसार रे जेउं जेउं कर्म निर्दोष बा दोष शून्य स्वीकृत बोली समस्ते कहते सही सब कर्म करिवो ये सब व्यतीत दोषयुक्त बा निषिद्ध कर्म कदापि करिवो नाही शास्त्र और शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण सर्वदा अनुकरण करिवो सत्य को ग्रहण असत्य को त्याग करिबा और अविद्या को नाश कर विद्यार वृद्धि करिबा आमर समस्त कर्तव्य चतुर्थ प्रश्न तार उत्तर सबुदिन वार्ता कौन ना पृथ्वी भाण्डम गगन पिधान ये संसार प्रतिदिन घटना हूँ पृथ्वी रूप हांडी आकाश रूपी घोड़नी को दे दिवस और रात्रि को जाड़ी काठ करी सूर्य रूपक अग्नि संयोग करी मास ऋतु चटु को धरी काल ये प्राणी जगत को पकाई रंधन करुछी सबुठारु बड़ वार्ता बड़ कथा धर्मराजा उत्तर को शुणी बगपक्षी भाषे गिर।

अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ए गीतटी को गाई सोनू निगम, कथा चित्र बेवफा सनम। तेबे अनुरोध करी श्रोता हेली बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजामरू नारायण प्रधान। आपण अनुरोध गीत आपण प्रचार करुछु, शुणी नियंतु।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତ, ପ୍ରଯୋଜନା ବିନୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ସହଯୋଗିତା ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓ କି ଅନକହି ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେ ନୟ ଭାରତ କି। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक